तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। और इंसान है ही ना शुक्रा, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संग्रेजों की भरी हुई आंधी चला दे फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओ, या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज़ पुरस करने वाला ना पाओ।

0: दुधोपिया हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मामूल अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: मुल्क में चौमासे जा वसकारा शुरू केपी के इस्लामाबाद पंजाब ए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में तूफानी बरसात मुख्तलिफ हंधन ते गड़ो भी पयो केपीके में लेड स्लाइडिंग सबब मुख्तलिफ रोड बंद बरसाती नालन में बोड वारी सूरत हाल इंतजामिया के सियान के मथाउन इलाकन दां सफर न करण की हिदायत बलूचिस्तान के इलाके जोब में तूफानी बरसात सबब घर की छित किरी पई बजणा फोत चार जख्मी केपीके के इलाके बाड़ा में वज किरण सब बार फोत टे जख्मी सतावी घर मुरा सिंध में भी टे चार जुलाई ते बरसात की अक थी थियल मुल्क में बरसात जो शुरू थियल सिलसिलो छह जुलाई तई जारी रहंदो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदारत हेठ चौमासे माहौलियाती खतरन बाबत इजलास एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी जोड़न जो फैसलो एनडीएमए चेयरमैन के चैनी सूबे आजाद कश्मीर ए गिलगित जो दौरो करण की हिदायत शहबाज शरीफ चयो ते दरियाउन के लंघन ए बोर्ड के रस्तन तां कब्जा खत्म कया वञन कौमी आबी तहफ़ुज़ लाइ वफाकी हुकूमत वॾी रकम रखी आहे बरसातन ए बोर्ड के तबाहकारियुनि खां बचण लाइ अॻुवाट कदम खणण जी ज़रूरत आहे अमेरिका ईरान विच में टैपकार जरिए कतर में गाल जारी परडेही खबरू इदारे मौजूद गाल महूर आबन अरमूर ईरान के मंजमंद असासन अर मीडिया मौजूद ईरान ए अमेरिका में हलंदड़ गाल गुझो रखो पो वे गाल दौरान अमेरिकी ए ईरानी नुमाइंदन की सीधी मुलाकात जो इम्कान न ईरान सा मामला बेहतरीन अंदाज में अगते वधी रहा है ईरान के एटमी प्रोग्राम में घटताई वारे रुख में वधी रहो आहे डिसूं अगते छा थो थिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे ते ईरानी वफ़द सां सुठियूं मुलाकातूं थियूं आहिनि ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे खिते में अमुन ज़रिए ई मुआशी ऐं सियासी इस्तक़ाम मुमकिन आहे इसराइल एक भेरो बीहर ईरान के निशानो बनाने की धमकी डेई छी इसराइल के दिफा वारे वजीर इसराइल काट चयो आहे ते ईरान ते पहिरें भी ब भेरा हमला करे चुका आहियूं जरूरत पवण ते टीहर भी हमलो करे सघूं था इसराइली फौज लबनान शाम ए गज़ा में अणॼातल मुदे ताईं मौजूद रहंदी

इसराइल पंहिंजे मालिक जी ॻाल्हि न ॿुधी त ईरान खे सबक सेखारींदो। असांजी अवाम या क़यादत खे कंहिं बि ख़तरे जो जवाब तकड़ो ऐं भरपूर हूंदो। ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त वाज़े ऐं सभिनी लाइ आहे। अमेरिकी सदर तिल अबीब में मौजूद माण्हुनि खे पटो न विधो त ईरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई जी आख़िरी रस्मनि जी शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो। ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो ऐलान, 8 जुलाई ते मुल्क में योम सोग मल्हायो वेंदो। ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान चयो आहे त शहीद आयतुल्ला खामनाई जी मड़ह जूं आख़िरी रस्मूं 4 खां 8 जुलाई ताईं तेहरान, कुम ऐं मशहद में अदा कयूं वेंदियूं। शहीद आयतुल्ला खामनाई जी मड़ह खे 8 जुलाई ते मशहद में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो। सी पे एक मनसूबो पाकिस्तान ऐं चीन विच में तरक़ी ऐं खुशहाली जो अहम मनसूबो आहे। सी पे 2 ज़रिए पाकिस्तान तरक़ी जूं वधीक मंज़िलूं तय करे रहियो आहे। चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जे विज़न ज़रिए चीन अवामी खे तरक़ी ऐं खुशहाली हासिल थी आहे। चीनी क़यादत पंहिंजे पॉलिसियुनि वसीले लखे माण्हुनि खे गुरबत मां ॿाहिरि कढियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद में चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जे 105 सालगिरह तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान ऐं चीन विच में दोस्ती नसलनि ताईं ॿधल आहे। पाक चीन लाॻापा मज़बूत बणाइण में चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जो अहम किरदार आहे।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: ईरान सां मामला बेहतरीन अंदाज में अगते वधी रहा आहिनि। ईरान जे एटमी प्रोग्राम में घटताई वारो अमल दुरुस्त रुख में अगते वधी रहियो आहे। ॾिसूं अगते छा थो थिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरानी वफ़द सां सुठियूं मुलाकातूं थियूं आहिनि। ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे, हिते में अमुन ज़रिए मुआशी ऐं सियासी इस्तेकाम मुमकिन आहे।
1: इसराइल एक भेरो ॿीहर ईरान खे निशानो पाइण जी धमकी ॾेई छॾी। इसराइल जे दिफ़ा वारे वज़ीर इसराइल कार्डुस चयो आहे त ईरान ते पहिरियां बि हमला करे चुका आहियूं, ज़रूरत पवण ते टीहर बि हमिलो करे सघूं था। इसराइली फ़ौज लबनान शाम गज़ा में अणॼातल मुदे ताईं मौजूदु रहंदी।
0: इसराइल सबक सेखारींदो, असांजी अवाम या क़यादत खे कंहिं बि ख़तरे जो जवाब तकड़ो ऐं भरपूर हूंदो। ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहिम जी यादाश्त वाज़े ऐं सभिनी लाइ आहे। अमेरिकी सदर तेल अबीब में मौजूद माण्हुनि खे पटो न विधो त ईरान खे सबक सेखारींदो।
1: ईरान शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जो आख़िरी रस्म जे शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो। ईरान में 6 जुलाई ते आम मोकल जो ऐलान, 8 जुलाई ते मुल्क में योम सोग मल्हायो वेंदो। ईरानी हुकूमत जे तर्जुमान चयो आहे त शहीद आयतुल्लाह खमनाई जो मर जो आख़िरी रस्मूं 4 खां 8 जुलाई ताईं तेहरान, कुम ऐं मशहद में अदा कयूं वेंदियूं। शहीद आयतुल्लाह खमनाई जी मर खे 8 जुलाई ते मशहद में मिटी माउ हवाले कयो वेंदो।
0: सी पेक मनसूबो पाकिस्तान ऐं चीन विच में तरक़ी ऐं खुशहाली जो अहम मनसूबो आहे। सी पेक 2 ज़रिए पाकिस्तान तरक़ी जूं वधीक मंज़िलूं तय करे रहियो आहे। चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जे विज़न ज़रिए चीनी अवाम खे तरक़ी ऐं खुशहाल हाल थी आहे। चीनी क़यादत पंहिंजे पॉलिसियुनि वसीले लखे माण्हुनि खे गुरबत मां ॿाहिरि कढियो। नायब वज़ीर आज़म एहसाक डार इस्लामाबाद में चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जे 125 सालगिरह तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान ऐं चीन विच में दोस्ती नसलनि ताईं ॿधल आहे। पाक चीन लाॻापा मज़बूत बणाइण में चीन जे कम्युनिस्ट पार्टी जो अहम किरदार आहे।
1: वफ़ाक़ी हुकूमत गुज़िरियल माली साल में सिंध खे हिसे खां 83 अरब रूपिया घटि ॾिना आहिनि। गुज़िरियल माली साल 2026-27 में सिंध खे वफ़ाक़ खां 175 अरब रूपिया मिलणा हुआ। कराची में ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त 30 जून 2026 ताईं सिंध खे वफ़ाक़ पारां सिर्फ़ 91 अरब रूपिया मिलिया। सिंध में बलदियाती निज़ाम मौजूद आहे जंहिं में बहितरी आणण जी ज़रूरत आहे। सिंध में 12 खां 18 कलाकनि ते लोड शेडिंग।
2: हमज़ा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो।
3: वो तो माली सेट कर देगा ना।
2: अरे वाह।
0: पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो। पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में कार्रवाई बाबति भारतीय इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान शहरनि जे तहफ़ुज़ ऐं सलामती लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो रहंदो। भारत अफ़ग़ानिस्तान जे सरज़मीन तां पाकिस्तान ख़िलाफ़ दहशतगर्द सरगर्मियुनि में मुलविस रहियो आहे। भारत दहशतगर्द तंज़ीमनि जे अफ़ग़ानिस्तान में सरपरस्ती बि करे रहियो आहे। पाड़ेसरी मुल्कनि में दहशतगर्दीअ खे हथी ॾींदड़ भारत जा बयान खिल जोगा आहिनि।
1: सेनेट जे अकलियती मामलनि बाबति क़ाइम कामेटीअ जो सिंध सेक्रेटरीअट में अहम इजलास। आज जी सिंध जी गैर हाज़िरीअ ते मेंबर्स पारां कावड़ जो इज़हार। कामेटी चेयरमैन दिनेश कुमार चयो त एजेंडा में प्रिया कुमारी अगवा केस जहिड़ो अहम मामलो शामिल हुजण बावजूद आज जी सिंध जी शरीक न थियण ते हैरत आहे। प्रिया कुमारी जी अगवा ते समूरी दुनिया में शर्मसार थी रहिया आहियूं। सिंध हुकूमत प्रिया कुमारी वारे केस ते संजीदा न थी त वफ़ाक़ खे जीआरटी जोड़ण लाइ चवंदासीं।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। CAFM 91.6।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: a product by Biocon Pakistan.
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time track is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
4: GFM 91.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना रखे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: हक सच जो आवाज गीत सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: अल हबीब करण बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप खुद KTN
3: सगे थी अमेरिकी नायब सदर JD वेंस अमेरिका गालियों लेख नियति सां करे रहे है।
4: ईरान जो अमेरिका इसराइली बमबारी सां मुतासिर एटीपी मागे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाज पार्लियामेंट और सिक्योरिटी काउंसिल पारा मंजूरी न मागन आलमी तबना एजेंसी के रसाई डी वी ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीब आबादी शहवाद अपना हुरमज से इंतकाम दिन पर ईरान अज कंट्रोल में आए फौजी इजलास अपना
3: यूक्रेन के गादी वाले शहर के उते रूस मिजाइल ड्रोन हमलो 10 जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी परदेही मीडिया मौजूद क्यू में 12 माकन जा आवाज बुधा वया आहन हमलन के नतीजे में 10 जणा मारजी वया आहन केतरा ही जख्मी थे आहन कुछ इमारतू भी थी आहन।
4: अखिल प्रवे जो कार इंतजाम हेठ मुड़स जाल के कतल कर छो लाश अस्पताल अलाबक मैसर जाल साबरा के कतल किया वाक बाद जवाबदार फरार थी वो इतलात पुलिस पहुंची और लाश हासिल कर छो
5: सोलर है बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
7: तहजीबो सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
8: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
7: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे
2: प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार सिंध की आवाज। जैसे ही आप आई होप चुकी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक साथ एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरी पूरी एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:17 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। आप तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बेटर देन एवर। अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर्स ने खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक या फिर कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए, आप अपने हर काम में कामयाब होते रहे, आमीन। और इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजा, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे बरसारों, ये करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखेर आगे लीजिए, आयानु, बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शावनी हाँ, एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है।

और इसी के साथ प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन

सबसे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 इसके ऊपर, तो कॉल्स भी आप लोगों की रिसीव करेंगे बहुत सारी, कमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और गाना प्ले करेंगे और साथ में जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब, स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की
1: ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa tayar kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ay Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
5: Ab aapki khoobsurti ka fan White Age Beauty Cream

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एटमंड और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं।

0: बेटा निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

आगे जी भाई का गाना हम प्ले करते हैं और ये रहा गाना, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और ब्रेक के साथ वापस आएंगे।

0: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी एफ एम 88 नेटवर्क ते।

0: कहाँ कुछ है यो?
1: जी बिल्कुल, और कौन सा गाना सुना रहे हैं आज आप हमें?
0: आज असाई कलाम बुधा जो अलन हो जुड़े से जो है सोनी सुधर तवारा हो प्यारा सिंह लिखाया।
1: ओके, तो गाके सुनाए, जो गाके सुनाएगा ना बंदा उसी का गाना प्ले होगा, ये जो है ना सेगमेंट का रूल है। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई, गाना नहीं आता, कोई बात नहीं, एक और कॉलर लेंगी और नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: यार जी सईद बात कर रहा हूँ, सिंध सोसाइटी सेक्टर से।
1: सईद भाई कैसे?
2: भाजी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो?
1: हाँ जी मैं ठीक हूँ। कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
2: गाना सुना रहा हूँ आर जी फायजा अली का,
1: सुना दी
2: सिंधी सॉन्ग है।
1: ओके,
2: दिल बच बच बच तो खा प्यार बुचो आ, दिल बच बच बच तो खा प्यार बुचो आ, हिन हिने संसार में इज़हार बुचो आ, दिल बच बच बच। और आरजी माशाल्लाह आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का भी सेगमेंट का हमारे को बहुत इंतजार है माशाल्लाह। कल में आप नए पौधे की मालूम दी, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: है ना?
2: बहुत मजा आया। और एवोकाडो के बारे में आपने मालूम दी, मैं बहुत शौक से सुन रहा था, कल शामिल नहीं हो पा रहा है, कॉल लगा रहा था
1: 12 बजे के बाद, आज भी 12 बजे के बाद सुनिएगा,
2: जरूर जरूर सुनूंगा इंशाल्लाह। और बहुत मालूम दी माशाल्लाह, अप्रिशिएट करूंगा आपको ऐसे सवाल के, आपको चुन चुन के माशाल्लाह, वो मेरे समझ लो सारे सवाल जो थे वो आपने खुद ब खुद कर दिए।
1: अरे वाह, बस इसी मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की तरफ से, और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे सेगमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे
2: माशाल्लाह। जरूर जरूर आजी, ये भी नया पौधा है अभी, ये भी इंशाल्लाह ये भी हम ट्राई करेंगे लगाने की कोशिश करेंगे जरूर भी। और माशाल्लाह आपका पूछने का ऐसा अंदाज तरीका है, मैं आपको क्या बताऊं, शायद कोई इंजीनियर भी आज ऐसा सवाल आप नहीं कर सकता है जैसे माशाल्लाह आप कर रहे हैं इसको तरीके से।
1: चलें जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सो मच अप्रिशिएटिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें सईद,
2: थैंक यू, अल्लाह
1: हाफिज। और ये थे स्वीट कॉलर सईद, और इसी के साथ मेरे ब्रेक पे जाने का वक्त करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। तो हम एक गाना प्ले करेंगे गाने के साथ न्यूज ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, और दोनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपना सेगमेंट अगला कर रहे होंगे जिसका नाम है हरा भरा पाकिस्तान। और हरा भरा पाकिस्तान में आज हमारे साथ एहतसाम मौजूद होंगे, और एहतसाम आज देखते हैं कि हमें किस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे KTN न्यूज।
1: गालियन चुभियो तो और शहीद आयतुल्ला खमेनी जी आखिरी रस्म बाद रखने पाकिस्तान अमरीकी अलग अलग मुलाकात।

कई वाहन स्विट्जरलैंड में थियल गाड़ियों ने इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे से अगबराई की है। बिन्हीं मुल्क विच में गाड़ियों जो बो दौर शहीद आतुल्ला खमदाई जो आखिरी रस्मन बात थी। कतरी पर वजारत मूजिब अमरीका ईरान गाड़ियों जारी रखने से इतफाक किया है। आयतुल्ला खमदाई के जनाजे बाद बिन्हीं मुल्क में गाड़ियों का सिलसिलो शुरू थी।

0: तो वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग की लपेट में अब वेस्ट भी आ चुका है, और हम आजकल खबरें भी देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या कुछ हो रहा है और दीगर ममालिक में क्या कुछ हो रहा है गर्मी की वजह से। लंदन का मैं आज देख रहा था कि शायद कोई 140 से करीब कुछ साल थे कि इतने साल पुराना रिकॉर्ड जून का जो है वो टूटा है गर्मी का। तो ओवरऑल गर्मी तो है, बीजिंग में भी आ गई है, 2-3 रोज कबल ही हमें थोड़ी सी ज्यादा गर्मी का एहसास हुआ है, लेकिन जो चीन के दीगर इलाके हैं उनमें डिफरेंट होता है मौसम। कुछ बालाई इलाके हैं वहां ज्यादा सर्दी नहीं होती, कुछ साहिली इलाके हैं जहां उमूमन पूरे साल गर्मी रहती है, जैसे कराची की आप बात कर लें और नमी भी रहती है। कुछ सर्द इलाके हैं, हार्बिन जैसे इलाके जो इस मौसम को एंजॉय करते हैं क्योंकि वहां फिर 6 महीने बर्फ होती है और शदीद बर्फ होती है, तो वहां के मामूलात जिंदगी मुतासिर होते हैं, लोग वहां से मूव कर जाते हैं उन दिनों में, आजकल वो अपने शहरों में वापस हैं। तो ये कुछ मिला जुला मौसम है चीन का अगर ओवरऑल हम बात करें।
1: ओके जी, तो एहतसाम आप ये बताइए कि आज हम किस बारे में बात करें, क्या टॉपिक है
0: आज? ये कपास के बारे में, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट दुनिया भर में एक ऐसी फसल है कि जिन ममालिक में ये पैदा होती है वहां पर बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान भी कुछ दहाइयों पहले एक खास नंबर रखता था कपास की पैदावार के हवाले से, जो कि अनलकीली अनफॉर्चुनेटली अब हम नहीं उस नंबर्स पर आते, लेकिन चीन में चूंकि हम बैठे हैं तो आज हम कुछ कंपैरिजन करेंगे कि चीन में कपास की पैदावार का क्या स्कोप है, क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में क्या है और हम क्या चीजें ठीक कर सकते हैं अपनी फसल को बेहतर करने के लिए। ये एक ऐसी फसल है जो कि जिसको कैश क्रॉप कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है दुनिया भर में, और चीन जो है वो इसकी पैदावार, इस्तेमाल और टेक्सटाइल सनत के हवाले से दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल होता है। चीन न सिर्फ दुनिया के बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है उसका भी एक सेंटर है, मरकज है। यही वजह है कि कपास चीन की जरई और सनती तरक्की में एक बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। अगर हम चीन में कपास की पैदावार का जायजा लें तो हर साल तकरीबन 6 से 7 मिलियन टन कपास पैदा होती है जो आलमी पैदावार का 20 से 25% बनता है। अगरचे बाज वर्षों में पैदावार मौसमी हालात के बायस कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन दुनिया के 3 बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में शामिल रहता है, यानी कि अगर हम ओवरऑल दुनिया, उसमें एक चीन है। हुकूमत जो है वो जदीद जरई टेक्नोलॉजी, मशीनी काश्त, बेहतर बीज और साइंसी तहकीक के जरिए कपास की पैदावार बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो यहां देती है। यही वजह है कि चीन में फी हेक्टर पैदावार दुनिया के कई दूसरे कपास पैदा करने वाले ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। यानी आप ये देखें कि एक तो आपके पास जमीन मौजूद है लेकिन उस जमीन का बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है, वहां पर फी हर में अगर हम बात करें तो दुनिया में ज्यादा बड़ा मुल्क है चीन पैदा करने के हवाले से कपास को। जो अहम इलाके हैं उनमें खास तौर पर सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाका है जो कि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है खंजराब साइड से, और ये एक ऐसा इलाका है जो कि जमीनी जोग्राफियाई अपने हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ट्रेड रूट्स के हवाले से हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से हो, और इसी तरह से ये कपास के हवाले से भी मशहूर है क्योंकि ये चीन का सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला इलाका है। इसकी जो मजमूई पैदावारी हिस्सा है पूरे चीन की पैदावार में तकरीबन कहते हैं कि 80 से 90% जो है वो सिंकियांग से हासिल होता है, और यहाँ 5.5 से 6 मिलियन टन तक की पैदावार जो है वो पहुंच जाती है। रीजन क्या है? रीजन है कि जरई जमीन जबरदस्त है, मुनासिब आबो हवा है, वहां की धूप जो है वो तवील दौरानिये तक रहती है, और फिर खास तौर पर जो मेहनत की गई है, कुछ तो कुदरती चीजें मिल गई लेकिन उसके बाद जो मेहनत है वो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है उसको वहां पर अपनाया गया है, क्योंकि सिंकियांग में कपास की जो चुनाई का जो मरहला है वो 90% से ज्यादा मशीनों के जरिए किया जाता है। इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं, मैंने भी कई ऐसे इलाके सिंकियांग में विजिट किए हैं जहां पर मशीन के जरिए बुआई और चुनाई की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से फसल जो है वो हासिल की जा सके। कुछ और इलाके हैं जिनमें येलो रिवर जो है उसका इलाका है।

0: है जिसमें हेनान सूबा आता है, शैनडोंग हमने जिक्र किया था एक प्रोग्राम में सूबे का वो आता है, हेबे जिक्र एक हमने इससे पहले किया था वो भी है, और इसके बाद दरियाए यांगसी के जो इलाके हैं जिनमें हुबे भी है, हुनान भी है, जियांगसू भी है और आनहुई, ये चार सूबे हैं। तो ये इन दरियाओं के साथ लगने वाले सूबे हैं। अब सवाल ये होता है कि फिर ऐसा क्या कर रहा है चीन के उसको ये जो फसल है वो ज्यादा मिल रही है और दुनिया भर में वो माना जा रहा है। तो जो इकदामात हैं उसमें सबसे पहले बात अगर हम करें तो वो जदीद बीज हैं। चीनी साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार देने वाले और बीमारियों के खिलाफ मजाहिमत करने वाले अकसाम जो हैं बीजों की वो तैयार की हैं। और आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते नहीं बल्कि उससे पहले सेकंड लास्ट वीक हमने जब बात की थी तो मैंने आपको यांगजू जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था याजुबे उसके हवाले से बात की, मैंने आपको कि वो कितने बड़े कितनी बड़ी तादाद में नए बीजों पर काम होता है। तो ये वही बीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा पैदावार देने के लिए और फिर साथ बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मजाहमत जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो मशीनी काट है जिसका हमने जिक्र किया, आपको मेरी आवाज आ रही?
1: जी जी बिल्कुल आ रही है
0: जी। जो मशीनी काश्त है उसका हमने जिक्र किया, वो भी एक बड़ा रीजन है। काश्त से लेकर चुनाई तक के तकरीबन तमाम मराहिल जो है वो जदीद मशीनरी इस्तेमाल होती है उसमें और लागत कम और पैदावार। डिफाइन करूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उस फील्ड में खड़े होकर, हमसे ये कहा गया कि आप जितने भी लोग यहां मौजूद हैं आप अपने हाथों से इन कपास के फूलों को चुनें और इसको एक थैले में डालें तो हम देखते हैं कि जाया कितना होता है और आप कितनी देर में इसको चुन सकते हैं। क्योंकि ज्यादा देर अगर फसल रहेगी और आपको चुनने में ज्यादा वक्त लगता है, अफरादी कुव्वत नहीं है, तो भी तो फसल खराब होती है और उसका एक खास वक्त होता है जब तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट जब लोग मिलकर चीन ने शायद मुकम्मल कर लिया था। ये एक तनाव मशीन की सेटिंग्स क्या है, वो कितने फूलों को कपाती है, चुन सकती है और कितना से जमा कर सकती है, ये तमाम चीजें। फिर ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते रहे हैं अक्सर, अब जदीद आपाशी में एक बड़ी कहना चाहिए कि जरूरी चीज है क्योंकि पानी के मसाइल दुनिया के तमाम हैं। तो खुश्क इलाकों में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन को वसी पैमाने पर फरोग दिया गया है जिससे पानी के इस्तेमाल में तकरीबन 30 से 50% तक की कमी आ जाती है। इसके अलावा जो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो डिजिटल एग्रीकल्चर की भी बात होती है जिसमें मस्नूई जहानत अब आ गई है, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर लें, सैटेलाइट के थ्रू निगरानी की हम बात कर लें, सेंसर टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें जिनकी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात करते रहे हैं। ये तमाम चीजें मिलकर इस एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज भी कर रही हैं, डिजिटलाइज भी कर रही हैं और इसका फायदा ये हो रहा है के थ्रू आपको पता चलता है कि किस जमीन को कितना पानी किस वक्त कैसे देना है, बीज आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, फिर सैटेलाइट निगरानी है उसकी, वो आप उससे आपको फायदा होता है कि आप अपनी फसल को देख सकते हैं। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हर चीज में ही तकरीबन हम देख रहे हैं कि शामिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन की अगर अब हम बात कर लें कपास के शोबे में ताबुन के हवाले से, तो पाकिस्तान और चीन गुज़श्ता कई बरसों से ज़रई ताबुन को फरोग दे रहे हैं जिसमें कपास भी एक अहम शोबा है, और चीनी और पाकिस्तानी ज़रई माहिरीन कपास की नए इकसाम की तैयारी, बीमारियों के तदारुक और पैदावार में इजाफे के लिए मुश्तरिका तहकीक भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 1000 जदीद जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं ज़राअत के हवाले से, उनका एक तरबियती प्रोग्राम भी जारी है जिस पर हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं इससे कबल। लेकिन जो CPAC के जरिए ज़रई ताबुन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें मिल जाता है कि हमने उस डोमेन में रहकर काम करना है, और उसमें जरई मशीनरी पाकिस्तान पहुंची है। अब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बीजों की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ जैसे मैंने कहा किसानों की तरबियत के हवाले से भी मनसूबे पर काम किया जा रहा है। सिंकियांग के जो जरई तहकीकी इदारे हैं पाकिस्तानी जरई मराकज के साथ, उनकी अब कोलेबोरेशन चल रही है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पाकिस्तान के सदर आसिफ विजिट किया था चाइना का, तो वो खास तौर पर सिंकियांग गए थे और वहां की जो जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे उन्होंने बात की थी और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के मुआहदे हुए थे, उसका भी एक अहम हिस्सा है। फिर जो टेक्नोलॉजी की मुंतकली है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को, उसमें हम देख रहे हैं कि मशीनी جو چنائی ہے اس کے حوالے سے بات ہو

0: हमें ब्लीच क्रीम चाहिए, हमें
1: डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद भी आपकी जल्द को बढ़े दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फे कुदरती डी हर दिन
2: हैदराबाद मटिया
3: पिता
2: सिंधु जुड़ा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

जी जी आते तो और मुझे अभी एक और मैसेज रिसीव हुआ है, अभी आपका शो सुन रहे हैं, हम भी आपका शो सुन रहे हैं। अब ये कौन है, ये कौन सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, ये भी इन्होंने हमें नहीं बताया है। इसके अलावा जी हमें एक और मैसेज रिसीव हुआ।

है. अस्सलाम वालेकुम सिंध की आरजी रुखसा, कैसी हो आप? हमेशा सलामत रहो. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है माशाल्लाह. आप सखर की शान हो माशाल्लाह. थैंक यू, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे.

0: बच्चों को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खील महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सांवली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
1: खुशखबरी, खुशखबरी अमां जे बारे जे बेहतरीन करियर आए रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आए मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आए फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिला जो शानदार ऐलान हाने पंजे बारे के बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM आए 5 साल DPD जनेटर 2 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW, ICNA ऐं खास गाल मुस्तहक शागिर्दन लाए स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिन जॾहिं त 2 सालन जे कोर्सेज में दाख़िला बिल्कुल फ्री आहे सहूलियतूं ऐं मञता असां वटि मौजूद आहे स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस AC क्लासरूम्स जदीद लेबोरेटरीज कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे दाख़िला महदूद आहिनि तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर फोन नंबर्स 07156-35642-03008311-207। खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
0: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
1: DHMS सिंध
0: RHMP इस्लामाबाद
1: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
0: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
1: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
0: कमर दर्द
1: अरकन निसा
0: जोड़ों का दर्द
1: हेपेटाइटिस
0: वजन की कमी या ज्यादती
1: बे औलादी
0: गंजपन का मुकम्मल इलाज
1: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
0: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
0: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
1: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
0: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
1: रब्ते के लिए
0: 0326-22-00-440

जिंदगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और लास्ट वीक में वापस आ गए हैं. लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे 03000113488 के ऊपर बहुत सारी. और इस वक्त हमें जैन सुन रहा है और जैन की मम्मा सुन रही है और उनके लिए हमने ये गाना प्ले किया है.

इकबाल लाशादी भी हमें सुन रहे हैं, गुलाम अली हमें सुन रहे हैं। गुलाम अली जागीरानी है, पहली बार आपके शो में शामिल हो रहा हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छी है, सलाम टू सिराज जागीरानी, थैंक यू। तारीफ के अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं करने को, वो भी कर लिया करें। रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर, अमेजिंग शो, थैंक यू रियाज भट्टी। एक और सॉन्ग प्ले करेंगे और साथ में लास्ट अनलकी कॉलर्स को एंटरटेन करेंगे।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
5: तस्दीक पड़ी तो चमान चवायत कतरी साल सन अमरीकी ऐं ईरानी नुमाइंदनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि इस्लाम

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: हर दिन डी स्किन फेस वॉश।

क्या बात है जी, यहाँ सरदा सौदा कर बैठी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाम यहाँ पर आप इंजॉय करेंगे. इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

तमाम प्रोडक्ट्स ऐं उन खां पोइ तव्हां जेको आहे इस्तेमाल करे सघो था ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधाए सघो था. सो प्रोग्राम आहे जनाब वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए क्या हर सच बोल देना जरूरी होता है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी और कहते हैं बदले में मां तो सच्ची गालायो आहे. तो बताइए हर सच बोलना जरूरी होता है या फिर नहीं.

हम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जल्दी से टाइम की बड़ी किल्लत है हमारे पास और जैसा खालिद क्या कहते हैं नहीं जरूरी नहीं हर सच्ची बात बोलना जैसे मुझे देखो कितना जब्त का दामन थाम कर बैठा हूँ आपके साथ साथ शो में ये टॉपिक आंसर तमाम साथ दुनिया भर जा जेके भी गमन और मुख्य लगे तो चाचे जी झोली में पहलाएं अल्लाह से आगे खुश करे उनके अलावा आकाश अली हमारे साथ मौजूद है आप ही आप कैसी है मैं आकाश अली पीरजादो फ्रॉम मोरो सिटी वेलकम करते हैं मोरो वालों को। अच्छा नदली कहती है टॉपिक नहीं नहीं मैं तो ऐसा ऐसा सच नहीं बोलती जैसे इंसान को बुरा लगे या वो हर्ट हो जाए। ओके किशोर भाई हमारे साथ हैं आओ भी अच्छी वजह से अदा खुश आयो सफा मजे में ताओ उदा किया है और अनवर भाई कहते सिदरा सुनाने भी न थी सुनाने था बाबा सुनाने था ताकि ना सुनाने दासी बाकी कहके सुनाने दासी और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है कहते सच बोलना सही है। ओके और निदली कहती है कि हाँ वो कल तुमने बोला था ना कि शो में आया करो इसीलिए मैं जल्दी आ गई और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। हाँ जी कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है और मोलाई मुजाहिद बहुत सारा हमारे साथ मौजूद है ठूप चूसर से वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ जी आप बताएं आप कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में और ये कहते हैं वैसे कसम से तुम जैसा समझदार मैंने कहीं नहीं देखा अपनी जिंदगी में देखो पहचान लिया ना कोई भी लिसनर छुप नहीं सकता तुमसे। हाँ ये बात है मैं हर किसी को पहचान जाती हूँ मैं ना छोटा सा डिटेक्टिव हूँ मेरे अंदर ना ये चीज है कि मुझसे कोई भी चीज जो है ना वो छुप नहीं सकती कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकता पता नहीं क्यों ये है मेरे अंदर और कई बार तबा मुझे ये लगता है कि शायद ये चीज मेरे अंदर ना होती तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे ना पता चलती और मैं जिंदगी में खुश होती क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी में अगर पता चल जाती हैं तो हमें तकलीफ देती हैं तकलीफ का बायस बनती हैं तो कुछ चीजें हाइड ही रहे तो अच्छा होता है।

कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं जल्दी से बताइए। और मुलायम मुजाहिद 2000 कहते हैं सिडूट जी आज तो मेरी पसंद का गाना लगाइएगा। बिल्कुल जी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक अगर आपका सच किसी बेशोर या मासूम इंसान को नाहक नुकसान पहुंचाता है तो वहां रुक जाना बेहतर है, लेकिन अगर सच छुपाने से किसी और के साथ नाइंसाफी हो रही है तो सच बोलना आपका फर्ज बन जाता है। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। ओके जी, और किशोर भाई क्या कहते हैं टॉपिक सब खां पहरियां सच चवण जो हौसलो हुजे बियो सच किथे चवणो आ हिन जी भी समझ हुजे। ओ इहा गाल अच्छा। ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पे से जो बात सीधी है बंदा अपनी बात सच कहे तो हम सच वही बोलते हैं जिसमें हमारा फायदा हो या हमें क्रेडिट मिले, लेकिन मैंने जो वक्त हालात और रिश्तों से सीखा है जब आप ज्यादा सच बोलेंगे तो अकेले हो जाएंगे, बट अगर किसी की दिल आजारी या कोई रिश्ता बच जाए और अच्छा बच जाए तो घणो गामू से चार न थियो बट सच का अपना बल होता है। लोगों को आईना दिखाओ तो उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता। कयूं तो छा कयूं प्ले लेला बाय अली जफर। ओके गाना अच्छा बोला है लगाते हैं। वैसे तवां जी गाल में बिल्कुल दमा है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप आईना उठाया करें तो पहले खुद देखा करें फिर लोगों को दिखाया करें, लेकिन ये हौसला बहुत ही कम लोगों के अंदर मौजूद होता है।

अच्छा एम अंसारी कहते हैं एक बात और भी ऐड कर दूं कि लोग सच जल्दी कह देते हैं लेकिन जब सच सुनने की बात आती है तो मुंह बना लेते हैं। बिल्कुल जी ये बात है। और मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो टॉपिक में एक दिन स्कूल में गया था, पापा ने पूछा मुजाहिद तुम कल स्कूल गए थे, मैं बोलने लगा लेकिन अम्मी बोलने लगी हाँ हाँ कल ये स्कूल गया था। मैंने सोचा पापा को सच बोल दूं, मैंने पापा से बोला मैं नहीं गया था तो पापा ने खूब पीटा, तो मेरे ख्याल में खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, क्या बोलती तू? इस मामले में मैं नो बोलती, स्कूल तो जाना चाहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ भाई ये बात है, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करे, एक कॉमेंट पढ़ने के साथ साथ मेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा उनके अलावा अब्दुल रजाक भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और लखमीर अबड़ो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं सॉन्ग सुना दीजिए, गाना सुनाते हैं जी आपको, सॉन्ग नहीं। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। चिंता जानी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। अच्छा किशोर भाई कहते हैं दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं उन सबके पीछे व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का कमाल है। ओ या गाल लगे तो हानि तक समझ में आई, मेरी खूबसूरती के पीछे व्हाइटिश लवली क्रीम का हाथ है।

साइन जेआईटी जोड़ी वे हेठी आफ्ताब प्रिया जी अगवा में को भी बासर मुलविस ना असि इदारे छुन गलत हुई ब धाड़ेल मारजी वया एक जेल में है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव नूर मुझो तो
2: सिंधु। आपके लिए मार्केट में मौजूद है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी या बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। सबसे पहली बात कि जनाब ये डॉक्टर से अप्रूव किया हुआ प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है।

पोस्ट को लाइक और शेयर करें। बाबा छो कंजूसी दिखारी अव छो ये सफा लाइक क्या अव छो मुझे बुधायो था। उनका अलावा जो माहिन बलोच हमारे साथ मौजूद है। हेलो हाउ आर यू, मुझे सॉन्ग सुनाओ, जेडी मशहूर आया तेडी मकरूर आया। ओके ओके। और कहती है किशोर भाई को कहो कॉल पर आया करे और गाना सुनाया करे। किशोर भाई की कॉल नहीं लगती ना मेरे प्रोग्राम में क्या? ये किशोर भाई बड़ी क्या चल रहा है ये किशोर भाई? अच्छा अंसर अली हमारे साथ हैं, कहते मां तो हक सच ही चवंदो आया। अंसर भा तुम मोहब्बत हुआ काफी टाइम का पोई तुम प्रोग्राम में शामिल थे तवहां जो गानो आ है केड़ो गानो हाने लाया पेरन जो को फरमाइश कियो या ही वालो जो को हाने चयो थो? आप भी चाचा हमें कंफ्यूज कर दे रहे हैं।

ओके सोनी हमारे साथ कह रही आप ही देखे ना आपकी मम्मा मुझे सुनती हैं, अगर सुनती हैं तो बताएं जरा मम्मा को कुछ बात बोलनी है मैंने। अच्छा सज्जाद अली जमाली है नवाब शाह से शो आपका नाइस से सोने जो जरूर इंदो बाबा तां थोड़ो सबर कयो। अच्छा ये भाई कहते हैं अल्लाह सफा भी न मान तवां सां चार पंज कलाक ॻाल्हाए सघां थी चार पंज कलाक प्रोग्राम कयो वारे साथ जी फ्रॉम हिंगोसे बाजी सिद्रा तव्हां कीअं आहियो बाजी कुझु त क़दुरु कयो शेला गुल जो हज़र गानो हलायूं था थैंक यू डेडिकेटेड ड्राइवर नज़ीर सोलंगी आसिम अली सोलंगी सिराज सोलंगी अलाह वसायो एंड सफ़ीर सोलंगी जे नाले।

अच्छा अब्दुल रज़ा कहते हैं वाइट एश झली पोटो स्टाप में कौन थी ब्यूटी क्रीम सा बुधू था बाबा बुधो था तो लगान भी घुर्जे असा बिल्कुल तवाज एरिया में अवेलेबल करायूं था।

हम यहाँ चुके हैं मदीद एंड वेलकम कहा जाता है। यहाँ अलावा किशोर भाई कहते हैं गाइज आपने कभी परी देखी है? नहीं देखी। ये हमारी अदी सिद्रा मुस्कान, इसने भी नहीं देखी। मैंने देखी है, मैंने देखी है बालवी ड्रामे में। एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ऐसा कौन करता है बोला। अल्लाह से डो नहीं।

0: हाय अल्लाह अच्छा इकड़ो मिनट इकड़ो मिनट बजे ताई दादा तमाम इन ब्यूटी शो रहो
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: इट्स 2:30 PM This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream जो deep clean करे और दे चार गुना brightness चमक ऐसी diamond skin जैसी Hemme Diamond Glow Bleach Cream
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स असली ग्लो जो अप्रोडक्ट
1: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: मैक्रीनो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
4: लास्ट थिंग में

इंसान के एविडेंस तो होना ही चाहिए. बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो. अच्छा फहीम शेख लिखते हैं कि माना कि तूने दर्द बढ़ाए हैं आज तक, हमने भी अपने अश्क छुपाए हैं आज तक. पत्थर जमाने भर के तो हंस कर सहे, मगर शिकवे ना लपर तेरे लाए हैं आज तक. मुफलिसी की झोपड़ी में जो फाकों का राज है, ये नोहे हमने सबको सुनाए हैं आज तक. वो आके मेरे पास कभी बैठता ही नहीं, ख्वाबों में जिसके दीप जलाए हैं आज तक. सच कहने की सजा तो मिली है हमें, मगर कोड़े तो मसलहत के ना खाए हैं आज तक. ओके जी, वेरी नाइस.

बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें, और साथ साथ वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा हमारे पास बचा है। सोनी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सोनी की अम्मी जान भी हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। और सोनी की अम्मी जान को बस यही कहूंगी कि आप सोनी को ज्यादा तक मत किया करें। मेरे को खास अब्दुल्ला भाई कहते हैं आपका भाई हमारे साथ है जी, बहुत शुक्रिया हमारे भाई आपको वेलकम करते हैं। और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ, यदि खुश है बिल्कुल भातान जो मोहब्बत हूँ तो आंसर से गुड मौजूद है।

0: अच्छा पोसिया सुमरो जो जो गानो ना वो थोड़ो मथे भजी गयो सो नेक्स्ट टाइम उदनस अच्छा निधि कहती है कि हाँ हाँ मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने ब्यूटीफुल बना दिया है अब आप सब भी यूज करें और प्यारे प्यारे बन जाएं बिल्कुल जी प्यारे प्यारे बन जाइए और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम बाजी आपका प्रोग्राम सुनता हूँ बहुत और शामिल नहीं हो पाता आप बहुत अच्छी हैं ओके जी आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं बहुत शुक्रिया आपका अच्छा दर्दी दिल कहती है कि टॉपिक सच बोलना अच्छी बात है पर कभी सच बोलना महंगा भी पड़ जाता है तो कभी सच बोला करो कभी झूठ बोला करो ओके बिलाल कहते हैं गाना अच्छा है मेरी तरह क्या बात है और रहें जी हमारे साथ एम अंसारी कहते हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत है मगर कोई दिलाए ना हाय हाय इतनी सुस्ती हाय हाय
1: किरणों से सजाए
0: सुस्ती या फिर
1: प्यार
0: ए गुर्बत सच बताएं क्या मसला है
1: सारी इसमें बिताए
0: अच्छा वासु भाई हेलो अच्छा अब्दुल अहद अब्बासी कहते हैं मोहतरमा आओ एफएम जो
1: बनाए
0: अच्छा एफएम रेडियो में पहिरियों भेड़ो शामिल थियो आहे नलाए वक्त जी खबर नाहे अवां इनायत फरमायो अवां जो प्रोग्राम कॾहिं ईंदो आहे बिल्कुल भाउ खे ॿुधाईंदासीं मुंहिंजो प्रोग्राम डेली ईंदो आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे जुमे ते मुंहिंजी मोकल हूंदी आहे बाक़ी सॼो हफ़्तो तव्हांजो मथो खाईंदा आहियूं

अनवर भाई मत करें. अच्छा डायल करके देखिए 03157990595. और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक लगाते हैं.

ओके सो ये बहुत ही प्यारा गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक है और इसी के साथ साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है और आबिद हुसैन शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद है। कहते अदी हाने कूड़ जो ना फैशन बनजी वो है बिल्कुल बात हाँ सही था जो मुन्नवर मुगल है मेरे को खास है। कहते अदी लाड़काना में घूमने की कौन सी जगह है? भाई बहुत सारी जगह है लाड़काना में घूमने की, मतलब बहुत ज्यादा है, इतनी कि मुझे पता ही नहीं। मोहनजोदड़ो जो कि आप घूम सकते हैं, उसके अलावा अब तो भाई मुझे लगता है कि रोजाना लाड़काना में एक नया होटल खुलता है, ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि आप घूम सकते हैं।

भाई ॾाढो गम मिलियो आहे वीचारे खे, सो दिलि जेका आहे उहा बर्बाद थी वई अथसि, ऐं असां हाणे हितां निकिरण जी वारी कयूं था। और हुन खां अलावा फ़हीम कहते हैं कि आज में चुप करके शो सुन रहा था, छो भला, का ख़ासि ॻाल्हि हुई? बिलाल कहते सिदरा अब हम हलेंगे फिर मिलेंगे, ओके आइए असो हलेंगे। अच्छा वाकई भाई शमन का गाना आज रह गया प्रोग्राम में, वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में तवांखे शमन जो गानो ॿुधाईंदासीं, फलो सफ़ा वी आई पी शमन जो गानो ॿुधंदासीं। सो ओके सो वेंदी वेंदी तव्हांखे चवंदी वेंदमि त अगरि अञा ताईं तव्हां सोचो पिया बाबा त तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा त सोचो न बाबा, एतिरो न सोचींदा कयो। तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका आहे न उनखे ज़रूरत आहे त हू वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि, उन्हनि जो इस्तेमालु कयो तव्हां। ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हां इस्तेमालु कंदा तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट हिन जे अंदरि मिली वेंदो। तव्हांखे नाइट क्रीम मिलंदी, तव्हांखे फेयरनेस क्रीम मिलंदी, तव्हांखे साबुण मिलंदो, तव्हांखे फेस वॉश मिलंदो, हर तरह जा प्रोडक्ट अवेलेबल आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी स्किन सदंदी बाबा तव्हां ख़ूबसूरत रहो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो। तव्हांजो असांजो साथ हूंदो जीअं हमेशह ॾींदा आहियो, फीडबैक रहे हाज़िर कयूं था।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

एक मरतबा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज बताया, साथ में ये भी कहा कि अगले मुआयने तक नमाज में झुकने से परहेज करें या फिर इशारे से नमाज पढ़ लें। घर आ जाने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया। उसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा हो सकता ना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसने नरम चीजें खिलाने का कहा। एक दो दिन तक घर वालों ने देखा मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली न लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ ली है कि आप खाना क्यों ना खाने से, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिस्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। तो ये एक इंसान की एक थिंक है, एक सोच है, और उसकी बनिस्बत अगर हम अपनी जानिब देखें हम क्या करते हैं, हमारा क्या फैल है। हमारा फैल ये है कि वही होना चाहिए जो मैं चाहती हूँ, वही होना चाहिए, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले भी मेरे हिसाब से चलें, और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें अपनी राय देने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ही बेकार से लोग हैं ये, इनको तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, बल्कि मेरे इशारे पे चलना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं ना, खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्ला कहना नहीं चाहिए, हम अल्लाह ताला को भी बता रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत अहम है, ये चीज़ चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारी जिंदगी में, हमें वहां होना चाहिए, उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ वो होना चाहिए। ये सब हम क्या कर रहे होते, ये हम अपनी जात में अपने आप को जो मुकम्मल समझ रहे होते हैं ना, ऐसा हरगिज नहीं है। रियलिटी इसके बरअक्स है। इंसान खुदा का पुतला, इंसान में खूबियां और खामियां दोनों मौजूद हैं, और मेरे इल्म के मुताबिक जितना नाकिस इल्म मुझे आता है, मुझ कम फहम के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो ज़ात अक़दस हैं वो मुकम्मल हैं अपनी ज़ात में, और वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। अगर हम उनकी सवाने हयात उठाकर देखेंगे तो हमें उनमें से ऐसा कुछ भी कोई मिसाल नहीं मिलने वाली, कोई वाकया नहीं मिलने वाला जैसे कि हमारी लाइफ में होता है। और रब्बे कायनात ने ये जो कायनात तख्लीक की है, वजह तख्लीक कायनात है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, हम अपना एक दिन भी उस हिसाब से नहीं गुजार सकते। उसके बाद हम ये समझते हैं हमारे दिमाग में फुतूर ये है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अपडाउन होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अल्लाह ताला को हम नजर नहीं आते कि आप बहुत अफसोस का मकाम है। हम डिग्री होल्डर्स, हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, और हमारा माशरे में एक बहुत ज़बरदस्त सा मकाम है, और ये सब होने के बावजूद भी हमारी अकल का जो खाना है वो उस सबक से खाली है जो हमें 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस ने पढ़ाया था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनी अपनी ज़ात में कोशिश ये करनी है कि आपका जो वजूद है, अगर आपसे कोई फर्स्ट टाइम कोई अजनबी भी मिले तो वो आपसे इंस्पायर होकर ज़रूर पूछे कि आप किस मज़हब के पैरोकार हैं, किस मज़हब को फॉलो करते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो है, ओवर एज लोग भी जो हैं वो अगर बैठे तो झिझक ना जाए। आपकी जात इतनी जो है इस माशरे में पॉजिटिव होनी चाहिए कि आपसे मिलने वाला आपसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करे, और कोशिश यही करनी है आपने कि अपने वजूद को जो है इस माशरे में मस्बत चेंजिंग का बायस बनाना है, ना कि नेगेटिविटी को अपनी जात का हिस्सा बनाना है। आई विश कि आपकी जात जो है आपके पेरेंट्स की जो तारीफ होती है ना कि इनका बच्चा बहुत प्यारा है, ऐसे ही आपके बारे में भी कहा जाए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये किसी अच्छे माँ बाप का बच्चा लगता है, इसकी तरबियत बहुत ही बेहतरीन है। तो आपने अपने वजूद को ऐसा ही बनाना है। यही है आज का पैगाम। आप सबके नाम अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और खुश आमदीद कहेंगे आपको हमारे प्रोग्राम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मोहम्मद उमर बुगजो ट्रस्ट हॉस्पिटल जिते माहिर तजुर्ब। बेकार डॉक्टर की निगरानी में मुनासिब फीस दे मरीजन जो इलाज, सर्जिकल मेडिकल सहूलतों, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत असान जो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड वेझो, डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधिक मालूमात लाए 0341342982।
3: आँखों के सबसे बड़े इदारे के मशहूर और तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अजीज कालेपन का इलाज और ऑपरेशन, पर्दों की बीमारियों का इलाज और आँखों की दीगर बीमारियों का इलाज करते हैं। रोजाना सुबह 10 बजे से 1
4: जी एफ एम ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तारीफ ने इसकी वजह स्मार्ट लॉकडाउन करार देते हुए बाकी सब कुछ जल्द बंद हो जाता है, लेकिन पेट्रोल पंप मुसलसल खुले रहते हैं, इसलिए यहाँ शादी की तकरीब मुनक्किद की गई है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, हर शख्स की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। हम किसी की राय को चेंज करने के लिए उस शख्स को मजबूर नहीं कर सकते। और जनाब, यहाँ पर एक और सोशल मीडिया पोस्ट नजरों के सामने से गुजरी है, और मगरबी ऑस्ट्रिया के इलाके साल्ज़बर्ग में पेजन ड्रोव के करीब हादसा पेश आया, जो अल्पाइन रेजोर्ट के करीब है, और पैराग्लाइड के कैमरे से फिल्माई गई वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा सिंसिया तैयारा पीछे से करीब आया, जिसके बाद उसके

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक
1: कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते आप सुन रहे हैं
2: GFM 88

0: अब आप सुनेंगे जीए
1: ईरान ऐं तुर्किया जे दौरे ते रवानो थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई जी जनाज़े नमाज़ में शरीक थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अदराबी चयो आहे त पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे जी हिकतरफ़ी मुअतली खे रद्द कयो आहे। सिंध तास मुआहदे बाबति सेमिनार में बि सिंध तास मुआहदे खे हथियार तौर इस्तेमाल न करण ते ज़ोर भरियो वियो। तालिबान ऐं ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन गज़ब उलत जारी आहे। पाकिस्तान पंज शहरनि जी सलामतीअ ते को बि ठाह न कंदो। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजे सरज़मीन जो इस्तेमाल रोके।

0: It's time to commercial break.
1: हिकु ॿिनि सालनि जी डिप्लोमा जे कोर्सेस लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। दाख़िला फीस 5,000, महवार फीस 4,000। रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलेटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, मीरवा रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ

0: 0300-282-3667, 0333-721-4436.
1: अखियुनि जे सभ खां वॾे इदारे जा मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी ऐं सर्जन डॉक्टर इसरार मोहम्मद हयात ख़ान सफ़ेद जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं, शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं। आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा। एड्रेस: सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेज़र अखियुनि जी अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 0303-2617-077।
2: कारोबारी हज़रात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जे मेर आम एलनात, शादी ब्याह की मुबारकबाद, मिलाद, जलसा, स्कूल, कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, एनजीओस, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सकाफती मेला, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड शॉप्स, सीड कारपोरेशन, सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को 4 चांद, वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर 0333-227-24301 और 0333-372-071।

0: किसान की शान, मेहमान की पहचान। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

एक बारीक जो है वो कपड़ा ले लें, उस पर नाक और आंखों की जगह जो है कट कर लें। इस कपड़े पर महलूल को अच्छी तरह फैला लें, आराम से इसे अपने चेहरे पे चिपकाएं, आराम से अपने करीब किसी बर्तन में गर्म पानी का इंतजाम भी करके रखें, इस पानी में स्पंज को भिगो कर निचोड़ लें और चेहरे पर जो है जब आपने अच्छे से अप्लाई कर दिया है ये मास्क, जब आपका स्पंज ठंडा होने लगे तो फिर इसे दोबारा नीम गर्म पानी में डुबो लें और अपने चेहरे की अच्छी सी सिकाई कर लें। 40 मिनट तक ये अमल मुसलसल जारी रखना है। आफ्टर 40 मिनट्स आपने नीम गर्म पानी से लेप उतार कर अपने चेहरे को सादे पानी से वॉश कर लेना है और चेहरा धो लेने के बाद आपने अपने चेहरे पे क्रीम का मसाज करना है। उसके बाद आपको रंगत वाजे तौर पर निखरी हुई महसूस होगी। तो जनाब ये तो फेशियल के जो भी मराहिल थे उससे रिलेटेड हमने जो है हतुल इम्कान कोशिश की है। आपको जो है बेसिक नॉलेज दी जाए, इससे जो है आपको बिना पार्लर जाए अपने घर पर भी जो है स्किन की केयर आप जो है कर सकते हैं बिना विदाउट एक्स्ट्रा खर्च के। समिन बहुत से लोगों में एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि फेशियल करवाने की उम्र क्या है। तो इस हवाले से आपको बताती चलूं कि फेशियल करवाने के लिए उम्र का कोई तायुन नहीं है, ताहम मसाज फेशियल मसाज 25 साल की उम्र के बाद करना चाहिए क्योंकि उससे पहले आपकी जो स्किन होती है वो पुख्ता नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो मसाज आप अप्लाई करेंगे ये आपके चेहरे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कुछ माहिर ब्यूटिशियंस का कहना है कि फेशियल और मसाज करवाने की उम्र 20 साल होती है, लेकिन फेशियल के लिए चेहरे की जिल्द को भी मद्देनजर रखा जाता है। अमूमन खवातीन फेशियल करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सा एक काम है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। घर में ही आप जो है फेशियल करने के जो तरीकेकार हैं अगर आपको आता होगा तो उससे आप प्रैक्टिस में एक परफेक्ट एक से दो बार घर में जब आप कर लेंगे फेशियल तो फिर उसके बाद आपको जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा फेशियल लेने के बाद और फेशियल करने के बाद जो है स्किन पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट के उनकी गहराई में जो गर्द होती है मेल कुचेल होता है वो सब साफ हो जाता है, स्किन बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाती है। तो इसी वजह से आपकी स्किन जो है फेशियल के बाद जो है चमकदार और खूबसूरत दिखती है। आज जब भी आप फेशियल करवा रहे हो आपसे शेयर करती चलूं कि आंखों पर खीरे के जो हमने कतले काटे हुए होते हैं सैलेड के लिए काटते हैं ना ऐसे ही जो है ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत मुफीद होगी। तो जनाब फेशियल जो है वो स्किन के लिए बेहतर होता है, इसके हवाले से बेसिक कुछ नॉलेज थी जो हमने आपसे शेयर की है। अभी हम आपको ले चलते हैं सेगमेंट रिवर्स गियर में और यहाँ पर हम जो है शहनशाह गजल की प्यारी सुरीली मधुर जादुई आवाज में आपको बहुत प्यारा सा गीत सुनवाने वाले हैं। इस गीत के बाद आपने जाना है छोटे से तशहीरी वक्फे की जानी, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: लहर जिंदगी की लहर GFM 88 मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल जहां अरहित ऑपरेशन थिएटर अल्ट्रासाउंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स सर्जिकल और मेडिकल सहूलियत मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद एड्रेस मोहम्मद उमर बुघियो ट्रस्ट हॉस्पिटल मीरवा रोड नज़्द डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास मजीद मालूम के लिए 03-4134-29824
1: आंखों के

0: छा चाहियो था त अवां जो पैगाम बियन ताई पहुचे जेको अवां जो पहुचाए हर हंध जीए मीरपुर खास FM 88 केतरन ही नंढन वॾन शहरन में बुधो वेंदो आहे पब्लिसिटी जो बेहतरीन ज़रियो जीए मीरपुर खास FM 88 वधीक राब्ते लाइ मार्केटिंग मैनेजर मोबाइल नंबर्स 0332-2724-301 ऐं 0333-3722-071
1: मीरपुर खास की आवाज़ सिंध का हर चपा हर गोशा
2: जी FM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: जी FM 88

अब से दुनिया से गुजर जाते हैं, ऐसा करते हैं कि मर जाते हैं। कैसे होते हैं बिछड़ने वाले, हम ये सोचे भी तो डर जाते हैं। दिल तो टूटे तो सर महफिल भी बाल बेवजह बिखर जाते हैं। अब ना देखो मेरी बंजर आंखें चेहरे, चढ़ते दरिया तो उतर जाते हैं। धूप का रूप रचाने वाले शाम को और निखर जाते हैं। अपना मुड़ मुड़ कर पुकारो उनको, लोग रास्ते में ठहर जाते हैं। खाली दामन से शिकायत कैसी, अश्क आंखों में तो भर जाओगे। सोचो मोहसिन, लोग थक हार के

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिता इत्ते मस
0: आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: नहीं का चीज़ न आहे नकी कड़ो नहीं।

आसान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है, ये दुनिया जीत हार जाती है।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आप मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
1: मेरी बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
2: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
1: अच्छा।

0: हमेशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: चैनल बीर और मंगल रात 9 बजे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लड़ी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज,
2: उधर जीएफ।